0: कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

आए गोपिनी गोकुल में छैन शत्रुबाहु नारायण कृष्णजी ने फोन लगने वो अल सौ गोपिनी नारायण छैन नाई बहुत।

दुर्गा प्रसाद सेवापति कांचक साहब सुनखानी सुनसाया सुदामा की नारी करच बिन भारी विपत्ति ले पति चे जाई बिनति दर चिंता पिदर ले गुरु देवता राजा और पुन भला मानस का निदान खाली हर बंसन कहुंच ज्योति समना देवी के ही सौगर मन देव चंगा दर किनो मिलन चौधरी का हर्षित मिलाता नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बलि गए प्रयोजित पूछे बालिका में नारायण जन्म बालक ओ जननो बालक ओ जगन

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: आजुरा को ब्याची सावनी आई रही चुमा पानी ओरी ओ राजा राजा ने रानी आई उन संसार की नीराई ले यो जीवन ऐसा ईशु क्या कथा ना योगर को पीराई ले ओरी ओ उकाली जन को सावले ते ढूंगो गलां दा गल दाई ना गरा को मंचे ना विजय सामन दानाई फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊनी
2: शुरू करनी वेला ची गाई चा तो शुरू
1: में से बयान को झूल के गाम सीता को तोपनी बाहर तिम्रो बेची चावनी आई रे चुम्मा पनी
2: मेरो लेडी
0: हरी आवानो कांचोई पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई अठमाई समझाऊनी बिरसानी ओरियो श्रीराम मायरो सुना को शैली छाती मायरो उठाक ज्ञानपा मायर तो हवल दरवाजे समल को साइनो पा ओरियो
1: पहला तो चोपड़ गाँव थे आज अपनी गाँव थी अब किन वाले उल मुल्मा अलबीच नहीं जो

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

ada di kerama. Ujung pantalan ke atas. Mato Allah oleh si jasa. Ujung pantalan lagu dan sana. Ujung ke istakono. Pantal. Istak up. Tarikan pantal. Jalan sahih kelabar. Kekian lepas. Sekarang masalah ini ujian ini. Sama dengan istata istane. Sekarang kelabar. Lagi main laut ini di mana? Jadi kalau mata kita sabi di sana pada sair jasa, ujian tarikan awakam setan tarpa kami pada bina jangkari itu. Walau dia sahaja sahaja kita pergi ke desa pun bumi kalau pada kilupan yang berlarut dari di tapal jalan, mana sahaja pada bumi kalau kamu si tu pelat pada di sana, naga di kalau pas di गाने नीति अनुसार भूमि को उपयोग और उत्पादक तत्व की दिगाने अड़कला सार्वजनिक जगह को लागत प्रयासारी संरक्षण करने भू उपयोग योजना तथा बक्ति विकास को परिपालना करने भूमि सुगंधा की हर कला की संघीय सरकार को सहयोग में करके धनी प्रमाण पूजा की तरह वित्तीय सेवा तथा लगान प्रतिशी करते लगान के कार्य संचालन करना गाने प्रबंध मिलाएको छ कार्यक्रम और संचालन समस्त पश्चिम विकास कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन विकास मार्ग आयोजन करना सहकारी को अनुगमन सहकारी सत्ता कोपोमित प्रणाली में आबद्ध करने जस्ता कार्यक्रम संचालन करना भूमि व्यवस्था सहकारी तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ आवश्यक बल विनियोजन गरेको छु

0: मेरु देश मेरु जगदम्बा सीमेंट
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: देवरानी बोलावाने पनी देवर वलंता थमा जेठानी लीलाय बोलावाने पनी बालोलाका थमा घास काटनी कटराय सिलके बटराय सिलके जिंदावारे घर मेरो जान गाँव सिलो के मूर्खा परौला भरे
1: अब गीत
0: पान्जा पर्यो तिमलाई दिमी दिमी घाम लागेर गाउँ

बोला उनसे कतिलाई बोली लौराती भाई अभी तक पहाड़ बंदरलाई पीना हो लाती ना कीना भाई अभी तक पहाड़ ये na patako bina loye nai na bazare lai dage ko raja ko vande mata imra mane

जमके रुमाल त्रिशुली में खस्यो जमझम करने जमके रुमाल त्रिशुली में खस्यो एक हाँसखेल गर्दा माया प्रीति बस्यो मरी माया प्रीति बस्यो हिमाल चुली पल्लपटी हलालेको साल छ हिमाल चुली पल्लपटी हलालेको साल छ जति हेर्छौ तिमीले मलाई उति

राजा नवश काय सारे दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंखका पाला भूषित करौ मालस्ती माला दरौ देवौ दरौ तिस्मा चाना ननिलौ नागरी गोवर्धन हो तिरी दक्षे बलि दक्षे।